मिलन गीत आशा भोसले समग समहट बेगम गायने कला नमूत मे गीते गायने कला गुल साक्सना समग नायना विश्वाजीत सो नेक्स्ट लीड फ्रॉम आशा भोसले उन समहट बेगन हट गे सुगन ओरिजिनल उन डीजल लीड वेट गे सुगन फ्रॉम गुल साक्सना उन नायना विश्वाजीत